0: ஆயுஷ்மான் பாரதம் திட்டத்துக்கு உட்பட்ட சுமார் 60 கோடி மக்கள் 5 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான இலவச மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உரிமையாளர்கள். 12 கோடிக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு இதுவரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் ஏழை குடும்பங்களின் மருத்துவ செலவில் சுமார் 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆயுஷ்மான் செயலியை இன்றே பதிவிறக்கம் செய்து ஆயுஷ்மான் அட்டையை தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். மேலும் தகவல்களுக்கு 1455 என்ற எண்ணோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
1: காமன்வெல்த் கேம்ஸினுடைய 2026 அப்டேட்ஸ் கேட்கலாம்.
2: क्या कुछ खास चल रहा है ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोस्तों पदक तालिका पर हम चौथा स्थान जो है हमने काबिज कर लिया है वंदना प्रेरणा और अनुपम मिलकर हमें बता रहे हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की हर खबर बने रहिए हमारे साथ
3: कॉमनवेल्थ गेम्स
4: जब सपनों को मेहनत का साथ मिलता है तो उपलब्धियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। खेल केवल प्रतिस्पर्धा का नाम नहीं बल्कि निरंतर बेहतर बनने की एक सतत यात्रा है। ये धैर्य अनुशासन और उस विश्वास का उत्सव है जो हर खिलाड़ी को एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। इसी यात्रा में कभी नए कीर्तिमान बनते हैं, कभी नई प्रतिभाएं उभरती हैं और कभी ऐसे क्षण जन्म लेते हैं जिन्हें खेल इतिहास लंबे समय तक याद रखता है। इन्हीं भावनाओं और उपलब्धियों का साक्षी बना हुआ है स्कॉटलैंड का ग्लासगो, जहां जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी अपनी तैयारियों, प्रतिभा और संकल्प की परीक्षा दे रहे हैं। हर दिन नए मुकाबले, नए परिणाम और नई कहानियां इस महाकुंभ को और यादगार बना रहे हैं। भारत के लिए भी प्रतियोगिता का 10वां दिन कई मायनों में विशेष रहा।
5: राष्ट्रमंडल खेलों का आज अंतिम दिन है। कल बॉक्सिंग और एथलेटिक्स दोनों के अंतिम दिन थे और बॉक्सिंग में करिश्मा ही था कि 14 में से 10 फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाज थे और उन्होंने इतिहास रच दिया, अब तक का सबसे उम्दा प्रदर्शन। एथलेटिक्स के अंतिम दिन भारतीय कुल मिलाकर 7 स्पर्धाओं में थे, पदकों की उम्मीद थी और पदक आए भी और सारे रंगों के गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसके अलावा जूडो में भी भारतीय दमखम दिखा, ट्रैक, साइकिलिंग और बोस में भी भारतीय चुनौती थी। राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 का 10वां दिन और पूरा लेखा जोखा लेकर उपस्थित हैं हम। खेलों का 10वां दिन और भारतीय बॉक्सर्स ने दिखाया 10 का दम। सिलसिले का आगाज किया 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार ने। सामने स्कॉटलैंड की स्कारलेट सवाना। प्रीति की रिंग कवरेज, फुर्ती और सधे हुए मुक्कों ने सवाना को बाउट से रवाना कर दिया।

0: एकमत से निर्णय प्रीति पवार के पक्ष में रहा 5-0 और दिन की सुनहरी शुरुआत हो गई। बॉक्सिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक।
1: मैं बहुत खुश हूँ, मैंने एक अच्छा स्टार्ट किया इंडिया के लिए, आज गोल्ड जीता है, सो मेडल मैं सभी इंडियंस को डेडिकेट करूंगी।
0: 57 किलोग्राम में जैस्मिन लंबोरिया के पास लंबा अनुभव है, विश्व कप की स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं। उनके सामने ब्लू कॉर्नर में थी नॉर्दर्न आयरलैंड की मिशेला वॉल्च। जैस्मिन ने अनुभव का पूरा फायदा उठाया, अपना गार्ड हमेशा ऊंचा रखा, जब जरा भी मौका मिला तो जबरदस्त प्रहार कर दिए। जज सर्वसम्मत थे 5-0 का निर्णय उनके पक्ष में सुनाने को। दूसरी बाउट और दिन का दूसरा स्वर्ण पदक। साक्षी चौधरी अलग ही जीवट वाली बॉक्सर हैं। ट्रायल्स में निखत जरीन और मीनाक्षी हुड्डा को हराकर उन्होंने सनसनी फैला दी थी। उनके मुक्कों की धार कल सही इंग्लैंड की रूबी व्हाइट ने। पूरा स्टेडियम साक्षी बना साक्षी के सनसनाते प्रहारों का। साक्षी ने 5-0 से बाउट जीती और एक बार फिर स्टेडियम में भारतीय राष्ट्रगान की धुन सुनिश्चित कर दी।
2: The Indians are doing very well. From now onwards, we want all the gold medals because we have a strong team and we have trained so hard to win gold medals.
0: भारतीय फौज में एंट्री पाने वाली पहली महिला बॉक्सर राजस्थान की अरुंधति चौधरी के विरुद्ध थी इंग्लैंड की शांटल रीड 70 किलोग्राम में। लगा वही कहानी एक बार फिर कॉपी पेस्ट की जा रही है जो पहले 4 बार कही जा चुकी थी। 5-0 का निर्णय, भारत की जीत और दिन का 5वां स्वर्ण पदक।
3: Gold medalist and Commonwealth Games champion representing India, Arundhati Chaudhary.
0: इसके बाद 75 किलोग्राम वर्ग में वर्तमान में भारत की सबसे मशहूर बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन रिंग में उतरी। अभी तक बहुत विश्वास के साथ उन्होंने अपनी पिछली सारी लड़ाइयां जीती थी, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया की एमा सू ग्रीन ट्री उन पर 20 साबित हुई। दूसरे राउंड के बाद निर्णायकों के दिए अंकों को देखें तो दोनों के बराबर थे, यानी तीसरा राउंड निर्णायक होना था। यहां पर एक बार फिर एमा ने बाजी मार ली। लवलीना 1-4 से मुकाबला हार बैठी और उन्हें रजत पदक पर संतोष करना पड़ा।
3: सिल्वर मेडलिस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया लवलीना बोरगोहेन।
4: अगर किसी मुकाबले ने आखिरी पल तक दर्शकों की धड़कनें बढ़ाए रखी तो वो थे सचिन सिवाच। दोनों मुक्केबाजों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और जीत हार का फैसला आखिरी क्षणों तक टला रहा, लेकिन मुकाबले के अंतिम सेकंड में सचिन के एक जोरदार पंच ने विरोधी को लड़खड़ा दिया और उन्हें स्टैंडिंग काउंट लेना पड़ा। यही पल मुकाबले का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से सचिन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत के स्वर्णिम अभियान में एक और चमक दार अध्याय जोड़ दिया।
3: The Commonwealth Games champion in the red corner from India, Sachin.
5: अभी तो हमारा मेन एम तो अभी एशियन गेम होने पे ही रहेगा दादा, तो मैं यही चाहूंगा कि आगे इंडिया के खिलाड़ी और अच्छा करें।
4: अगली बारी थी अंकुश पंघाल की। शुरुआती दबाव के बाद अंकुश ने अपने काउंटर पंच और मजबूत डिफेंस के दम पर मुकाबले की तस्वीर बदल दी। उनके प्रतिद्वंदी शीतू पर एक अंक की कटौती भी हुई जिसका अंकुश ने पूरा फायदा उठाया। आखिरी क्षणों तक उन्होंने बढ़त बनाए रखी और 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से मुकाबला जीतकर भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।
3: And now Commonwealth Games champion in the red corner for India.
4: मणिपुर के चपल बॉक्सर जादूमणि ने एक तिलिस्म मचा रखा था पिछले दिनों, लेकिन कल 55 किलोग्राम में उनका जादू नहीं चला। कुछ तो वो ऑफ कलर रहे तो कुछ हाथ रहा ऑस्ट्रेलिया के जेड डिक्सन का। जादूमणि ने अपनी ओर से संघर्ष तो बहुत किया लेकिन वो काफी नहीं था। 0-5 से वो ये बाउट हार बैठे, लेकिन सिल्वर मेडल तो उनके गले में आया ही।
6: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश हूँ। टफ फाइट था, इस कंपटीशन में जो मेरा गलतियाँ है उसको मैं सुधारने के लिए कोशिश करूँगा।
4: दिन का आखिरी भारतीय फाइनल था सुपर हैवी वेट वर्ग का, जहाँ सभी की निगाहें नरेंद्र बरवाल पर थी। फाइनल में इंग्लैंड के डोमन थॉमस ने उनकी लय को शुरुआत से ही पढ़ लिया। मुकाबले के आखिरी राउंड में नरेंद्र ने वापसी की पूरी कोशिश की, लगातार हमले भी किए, लेकिन थॉमस हर बार का जवाब देने में सफल रहे। आखिरकार जजों ने सर्वसम्मति से मुकाबला इंग्लैंड के पक्ष में दिया।
0: इससे पहले सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था 2018 गोल्ड कोस्ट में, 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। यहाँ पर रहे कुल 10 पदक, लेकिन उनमें से 7 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक। सुनहरे अक्षरों में इतिहास के सीने पर लिखी हुई नई इबारत।

0: ट्रिपल जंप यानी तिहरी कूद में दोहरी सफलता भारत के हिस्से में आई। तमिलनाडु से आने वाले 26 साल के प्रवीण चित्रावेल की खास बात है उनका खुद पर विश्वास। इसके पहले 2022 बर्मिंघम खेलों में वे कांस्य पदक से चूक गए थे, लेकिन कल का स्टेज तो बस उनके लिए ही था। अपने चौथे प्रयास में 16.58 मीटर की कूद उन्हें ले आई दूसरे स्थान पर और भारत के लिए रजत पदक पक्का किया उन्होंने।
1: You know, I'm waiting for this medal 4 years. Last Commonwealth Games, I lost medal in 2 centimeters, but this time silver and bronze in India. Hopefully, I'll do again next Commonwealth Games in India.
0: सेल्वा प्रभु थिरुमारन, उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। बचपन से ही भागने कूदने का जुनून था उनको। बच्चे की जिद देख पिता ने अपनी 4 एकड़ जमीन बेच दी और बेटे ने पिता के त्याग को जाया नहीं होने दिया। 15.52 मीटर अपने पांचवें प्रयास में कूदे और भारत के लिए स्पर्धा में 2 पदक पक्के हो गए।
2: I could have jumped little far, but you know, it's all about I get the medal for the country. I'm so feel proud, you know.
0: अब बात पैरा शॉटपट F57 स्पर्धा की। गजब प्रदर्शन, एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक की आस पूरी की इस स्पर्धा ने, और ये आस पूरी की बिहार के लाल सोमन राणा ने। सोमन ने अपना गोला फेंका 13.40 मीटर तक और एथलेटिक्स में भी भारतीय राष्ट्रगान की धुन पक्की करती। एक माइन विस्फोट में अपना पैर गवा दिया था सोमन ने, लेकिन अपनी हिम्मत और अपने संकल्प शक्ति को नहीं गवाया। पिछले खेलों में वो रजत पदक लेकर आए थे और यहाँ पर सारी कमी दूर कर दी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर।
3: बहुत खुश लग रहा है क्योंकि इतना बड़े मंच पर और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल और 2 गोल्ड एंड सिल्वर मेडल दोनों।
0: सोमन के साथी शुभम जुएल, उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में अपना पूरा दम लगा दिया। हुंकार भरकर जो गोला फेंका वो गया 13.28 मीटर दूर। रजत पदक उनका हुआ। इत्तफाक है कि दोनों ही फौज में हैं और शुभम ने तो अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग भी फौज में आने के बाद बस 3 साल पहले ही शुरू की थी। इन दोनों पैरा एथलीटों को, उनके जज्बे, संकल्प और उनके जीवट को हमारा नमन है। 10,000 मीटर में गुलवीर सिंह ने रजत पदक पाया था और अब बारी थी 5,000 मीटर की। आखिरी लैप में जोर लगाया, लेकिन फिनिशिंग लाइन पार करने वाले तीसरे एथलीट बन पाए कांस्य पदक। समय रहा 13:24.35। एक और अनूठी बात, एक ही गेम्स में एथलेटिक्स में 2 पदक कमाने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए वो। पैरा 1500 मीटर में रमेश षणमुगम 7वें स्थान पर रहे। बदकिस्मत रही 10,000 मीटर रेस वॉक में प्रियंका कांस्य पदक से चूक गई, 4थे स्थान पर रही। तो इसी दौड़ में रवीना अपनी दौड़ पूरी नहीं कर सकी। वहीं पोल वॉल्ट में देव कुमार मीला और उनके साथ ही ट्रेनिंग करने वाले कुलदीप कुमार, उनसे उम्मीदें थी। देव 5.30 मीटर की दूरी के ऊपर नहीं जा सके, 4थे स्थान पर रह गए, जबकि कुलदीप 6थे स्थान पर आए। 4x400 मीटर मिश्रित रिले में भी भारतीय टीम कभी भी प्रतियोगिता में दिखी ही नहीं और 6थे स्थान पर आई।
4: जूडो मैट पर कल भारत का अभियान उतार चढ़ाव से भरा रहा। महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में उन्नति शर्मा ने बेहतरीन मैट अवेयरनेस और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की कोना क्रिस्टी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि अंतिम 4 के मुकाबले में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की साया मिडिल्टन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांस्य पदक मुकाबले में उन्नति ने शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की स्काई नोस्टर को एपों के जरिए मात दी और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। वहीं पुरुषों के 81 किलोग्राम वर्ग में हर्ष तोकस का सफर भी रोमांच से भरपूर रहा। क्वार्टर फाइनल में हार के बाद उन्होंने रेपेचाज में समोआ के पेनियामिना परसिवल को एपों से हरा कर शानदार वापसी की और कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई। हालांकि पदक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की केशिन ओची ने उन्हें मात दी और हर्ष का अभियान 4थे स्थान के साथ समाप्त हुआ। इसके अलावा पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में करणजीत सिंह मान क्वार्टर फाइनल में कनाडा के गुयोम गोलिन से हार गए। महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में इनुगनबी ताखिलमांबम ने भी भरपूर संघर्ष किया। क्वार्टर फाइनल में कनाडा के चार्ली थिबॉल से हारने के बाद उन्हें रेपेचाज के जरिए वापसी का मौका मिला, लेकिन इंग्लैंड की जेमिमा यीट्स ब्राउन के खिलाफ वो जीत दर्ज नहीं कर सकी। कुल मिलाकर जूडो मैट पर भारत के लिए ये दिन संघर्ष, वापसी और सीख तीनों का मिश्रण रहा। साइकिलिंग ट्रैक पर भारत की उम्मीदें तेज रफ्तार से आगे तो बढ़ी, पर फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाई। स्प्रिंट से लेकर स्क्रैच रेस तक भारतीय खिलाड़ियों ने पूरा दम लगाया, लेकिन अगले दौर का टिकट हासिल नहीं हो सका। पुरुष स्प्रिंट

क्वालिफिकेशन में रोजित सिंह यांगलेम ने 10.297 सेकंड के समय के साथ 22वें स्थान पर रहते हुए अपनी टाइम ट्रायल पूरी की। वहीं रोनाल्डो सिंह लेतोंजाम 10.331 सेकंड के साथ 24वें और डेविड बेकहम 25वें स्थान पर रहे। इसके बाद 10 किलोमीटर स्क्रैच रेस में भी भारत की चुनौती आगे नहीं बढ़ सकी। हर्षवीर सिंह सेखो और दिनेश कुमार अपनी अपनी हीट पूरी नहीं कर सके। After rewriting history in Birmingham, India's lawn bowlers arrived in Glasgow carrying the hopes of building on that remarkable legacy. The sport that once delivered India's first ever Commonwealth Games gold and silver medals had once again raised expectations. This time, though, the decisive moments belonged to the oppositions. In the men's pairs, Navneet Singh and Dinesh Kumar looked in outstanding touch throughout the sectional stage. Four consecutive victories had put the Indian duo firmly on course for the knockout rounds, making their clash against England's Nick Bread and Jamie Walker a crucial one. The contest

0: The men's pairs Navneet Singh and Dinesh Kumar looked in outstanding touch throughout the sectional stage. Four consecutive victories had put the Indian duo firmly on course for the knockout rounds, making their clash against England's Nick Bread and Jamie Walker a crucial one. The contest lived up to its billing, with neither side willing to give an inch before it was eventually decided in a tie break. England held its nerve in the decisive moments, bringing India's impressive winning run and its knockout hopes to an end. Meanwhile, in the women's singles, Nayanmoni Saikia also started brightly against South Africa's Bridget Hasselman. The South African carried the momentum into the decider, ending Saikia's campaign and closing India's challenge in the event.
1: और अब आज होने वाले मुकाबलों पर एक नजर। ट्रैक साइकिलिंग में 40 किलोमीटर पॉइंट्स रेस में हर्षवीर सिंह सैकम और दिनेश कुमार होंगे, 100 मीटर टाइम ट्रायल में रोनाल्डो सिंह, जबकि पैरा साइकिलिंग में 1000 मीटर टाइम ट्रायल महिला मुकाबले में लिशा दास वेलोड्रम में होंगी।
0: इंडिया विल हैव 3 जुडोकास इन एक्शन टुडे विद ऑल बिगनिंग देयर कैंपेन्स फ्रॉम द राउंड ऑफ 16। इशरूप नारंग वुमेन्स 78 केजी, अवतार सिंह इन मेन्स 100 केजी एंड यश खंगास इन मेन्स प्लस 100 केजी।
1: पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 63 स्वर्ण पदक सहित कुल 154 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। इंग्लैंड 26 स्वर्ण पदक सहित कुल 100 पदक लेकर दूसरे स्थान पर आ गया है और कनाडा 18 स्वर्ण सहित 59 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत ने 10वें दिन बॉक्सिंग स्वर्ण पदकों के चलते लंबी छलांग लगाई है। 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक लेकर भारत चौथे स्थान पर आ गया है।
0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे प्रेरणा शर्मा और मेरे सहयोगी अनुपम पाठक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: द कॉमनवेल्थ गेम्स।
3: ना कौनसे सीकरो ना
4: रश आर रेनबो।
3: சுறுசுறுப்பா அவசரமா விரு விருன்னு கிளம்பிட்டு இருக்கிற எல்லாருக்காகவும் தான் இந்த ஷோ ரஷ் ஆர் ரெயின்போ.

0: நேரம் 11 மணி. தொடர்வது செய்தி சுருக்கம்.
1: பிரஸ்தோத் ஹே கார்யக்ரம் போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் 111.
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ. साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है. और इस बार प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, हम सभी के प्रिय, हम सभी के आदरणीय. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये प्रेरणा दी कि हम अब्दुल कलाम जी के व्यक्तित्व को, उनके दर्शन को और देश के प्रति उनके योगदान को जाने, समझे और उसके महत्व को भी पहचाने. और साथ ही ये भी जाने कि किसी एक साधारण से परिवार में जन्मे किसी बच्चे की यात्रा रामेश्वरम से जब राष्ट्रपति भवन तक होती है तो बीच के क्या पड़ाव होते हैं और जीवन किस तरह से उनके सामने धीरे धीरे खुलता है. तो आइए सबसे पहले मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवाती हूँ. आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री अनुज सिन्हा जी को. आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के. आप एडवाइजर भी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में.
3: नमस्कार, थैंक यू.
2: हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नकुल पराशर. अप्लाइड फिजिक्स में आपने PhD की है, आप ऑथर भी हैं. विज्ञान आधारित कई पुस्तकें आपने लिखी हैं. स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड रहे हैं आप और साथ ही विज्ञान प्रसार के निदेशक भी रहे हैं. नकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में.
4: धन्यवाद, नमस्कार.
2: डॉक्टर रश्मि हमारे साथ हैं. आप एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता भी हैं. कलाम साहब की आत्मकथा आपने लिखी है, कलाम तुम लौट आओ पुस्तक आपने लिखी है, कलाम इंस्पायर्स आपकी रचना है. और एक बेहद खास बात ये है कि डॉक्टर रश्मि ने जब कलाम साहब की आत्मकथा लिखी तब उनका ही मार्गदर्शन रश्मि जी को प्राप्त हुआ. रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में.
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
2: तो साथियों, इससे पहले कि मैं अपने सवालों की बौछार अपने विशेषज्ञों पर करूं और अपने विशेषज्ञों के माध्यम से हम कलाम साहब को और जाने, आइए मैं आपको सुनवाती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का वो उद्गार, मन की बात का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उल्लेख किया है.
6: मेरे प्यारे देशवासियों, डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी. वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे. हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं. स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं. मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ.
2: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द और उन्होंने एक और प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, बेहद सम्मान से जिनका नाम लिया जाता है. तो आइए सबसे पहले हम अपने विशेषज्ञों से ये सवाल करते हैं. अनुज सिन्हा जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि हम जब APJ अब्दुल कलाम जी का नाम लेते हैं तो बहुत सम्मान मन में आता है. हम उन्हें अपने पूर्व राष्ट्रपति जी के रूप में याद रखें, हम उन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में याद रखें, हम उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद रखें, या उनके व्यक्तित्व के ऐसे भी और कई पहलू हैं जो हम सबको जानने चाहिए.
3: बहुत सही बात है. डॉक्टर कलाम जो है वो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं
2: जी.
3: उनकी शुरुआती जो लाइफ थी बड़ी कठिन थी
2: जी.
3: हाँ, और उसके बावजूद उनके पास जो वैल्यू सिस्टम्स आए
2: जी.
3: उनके फैमिली के रिलेशन की वजह से वो ऐसे थे कि आज भी मेरा ख्याल उनका बहुत इम्पोर्टेंस है. और वो जो वैल्यू सिस्टम्स हैं उसकी वजह से वो पहले स्पेस प्रोग्राम में उन्होंने अपना सिक्का जमाया
2: जी.
3: उसके बाद डिफेंस प्रोग्राम में अपना हुनर दिखाया और उसके बाद वो और कई चीजों में रहे, परंतु लार्जली जो उनका राष्ट्रपति पद पे जो रहे 5 वर्ष उसमें जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा, उसके बाद भी वो विद्यार्थियों के

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं सभी के प्रिय और सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। आप सर्वोच्च संवैधानिक पद पर तो आसीन रहे ही, भारत के आप राष्ट्रपति रहे, लेकिन साथ ही आप छोटे छोटे विद्यार्थियों के दिलों में भी बसे रहे, और यही सबसे बड़ी खास बात है जो उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट बनाती है। आज हम कलाम साहब के बारे में बात कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ हैं अनुज सिन्हा जी, आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और साथ ही आप पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के। हमारे साथ डॉक्टर नकुल पराशर हैं, आप भी पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के और साथ ही आप ऑथर भी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रश्मि हैं, आपने कलाम साहब की आत्मकथा लिखी है और भी अपनी रचनाएं आपने कलाम साहब को समर्पित की हैं, लेखिका हैं आप। तो रश्मि जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि पुस्तकें तो कलाम साहब पर बहुत लोगों ने लिखी हैं और गर्व भी महसूस करते हैं वो कि उनकी जो एक रचना है वो कलाम साहब के नाम हुई, उनकी लेखनी ने ये सौभाग्य पाया। लेकिन आपके साथ खासियत ये है कि जब आपने अपनी पुस्तक लिखी तो स्वयं कलाम साहब का मार्गदर्शन आपको मिला। मैं चाहूंगी कि आप अपना ये अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें। कैसा लगा आपको जब पहली बार आप उनके पास गई, उनसे मिली, और क्या फिर प्रक्रिया रही आगे बातचीत की?
1: मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं डॉ

0: डॉक्टर कलाम साहब से मैं दरअसल उसे 3 बार मिली
1: जी।
0: तो जब मैंने ये विचार किया कि मैं इन पर पुस्तक लिखूं तो मैं डॉक्टर कलाम साहब से मिली और मैंने उनसे कहा कि सर मैं आप पर एक पुस्तक लिखना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ऊपर तो बहुत किताबें हैं, बहुतों ने लिखा है, अब आप क्या लिखेंगी। तो मैंने कहा कि मैं आप पर उपन्यास लिखना चाहती हूँ, एक जीवनी परक उपन्यास। तो हंसते हुए बोले कि अब तो मुझे हीरो बनाओगी। तो मैंने कहा सर आप हीरो हैं, मैं आपको हीरो क्या बनाऊंगी। मैं तो बल्कि जब अपने युवाओं से बच्चों से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि बेटा तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, और जब वो मुझे किसी बॉलीवुड के स्टार का या हॉलीवुड के स्टार का नाम लेते हैं तो मेरे मन में बड़ी इच्छा होती है कि वो ये क्यों नहीं कहते कि डॉक्टर कलाम मेरे हीरो हैं, विवेकानंद मेरे हीरो हैं, भगत सिंह मेरे हीरो हैं। तो सर वो हंसने लगे, बिल्कुल बच्चों की तरह खिलखिला के हंसे। और आप यकीन मानिए मैं सोच के गई थी कि मैं देश के इतने बड़े भूतपूर्व राष्ट्रपति से मिल रही हूँ, भारत रत्न से मिल रही हूँ, मैं इतने बड़े प्रौद्योगिकी के और अपने वैज्ञानिक से मिल रही हूँ जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दिया। लेकिन जब मैं उनके सामने बैठी थी तो मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग के सामने बैठी थी, ऐसा लग रहा था। इतने विनम्र, हंसता हुआ चेहरा। आज जब मैं डॉक्टर कलाम को याद करती हूँ तो मैं उन्हें किसी पद से याद नहीं कर पाती। कभी मेरे सामने उनका वो चेहरा नहीं आता, ना राष्ट्रपति वाला, ना बस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक सौम्य सादगी से भरा चेहरा। एक ऐसे व्यक्ति जो कभी भी आपसे मुलाकात में अपनी उपलब्धियां नहीं बताएंगे, कभी भी अपने बारे में नहीं बताएंगे, वो हमेशा ये पूछेंगे कि देश में क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा, युवाओं में कैसे देश के प्रति संस्कार पैदा होंगे। उनका 2020 विजन इसी को समर्पित था, जिन्होंने अंतिम सांस तक जिस पर उन्होंने काम किया। तो मैं डॉक्टर कलाम को इस तरह से देखती हूँ, यहीं से बस इतनी प्रेरणा गहरी होती चली गई कि अब मुझे एक ऐसा उपन्यास देना है ताकि ये हमारी युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाए, हमारे बच्चों को एक सपना दिखाए, और यहीं से यात्रा शुरू हो गई।
1: जी, तो जब आपकी पुस्तक लिखी जा चुकी थी उसके बाद का क्या अनुभव था, ये कलाम साहब के हाथों में पहुंची?
0: हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जब ये पुस्तक शुरू की थी तो कलाम साहब के आशीर्वाद से शुरू की थी
1: जी।
0: उन्होंने मुझे कुछ चीजें भी सुझाई थी, वो सब मैंने डाली, यहाँ तक कि उनके हाथों में लॉन्च भी करवाना चाहती थी। लेकिन जब किताब का अंतिम रूप आया तो वो दुनिया से दैहिक रूप से जा चुके थे। ये मेरे लिए बहुत दुख का समय था। तो अगर आप इस उपन्यास को उठाएंगे तो उसकी जो पहली पांडुलिपि थी उसमें प्रारंभ और अंत थोड़ा अलग था, बाद में मुझे उसका अंत अलग करना पड़ा क्योंकि तब वो जा चुके थे। जब मैं ये पुस्तक पूरी कर रही थी तो मैं पूरी प्रेरणा से पूरी कर रही थी, लेकिन जब डॉक्टर कलाम दैहिक रूप से चले गए तो मैं बहुत उदास थी, निराश थी। लेकिन मेरे मित्रों ने, मेरे परिवार ने, मेरे प्रकाशक ने, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि नहीं रश्मि, इस पुस्तक को पूरा करेंगे, ये उनकी श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति आपकी। तो ये पुस्तक पूरी हुई, फिर डॉक्टर एसएम खान साहब ने इसको लॉन्च किया और इस तरह से ये फिर पुस्तक आई।
1: तो अपनी पसंद का कौन सा गाना इस समय कलाम साहब को याद करते हुए आप हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगी?
0: मैं सुनाना चाहूंगी आशाएं आशाएं, कुछ करने की हो आस आस, क्योंकि ये डॉक्टर कलाम के तो पूरा जीवन इसी में ही है।
1: जी, तो बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है, हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही की।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज का हमारा ये कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, हमारे ऐसे भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऐसे भारत रत्न जो हर दिल में बसते हैं, और उनके जीवन से जुड़े ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, जब जब हम उनके बारे में जानते हैं एक नई प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, अनुज सिन्हा जी हैं, डॉक्टर नकुल पराशर हैं, डॉक्टर रश्मि हैं। मैं अनुज जी अब आपसे जानना चाहूंगी, हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, ऐसे में हम उस समय की भी जरूर बात करें जब उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था। आप उस दौर को कैसे याद करते हैं, क्या उस तरह चुनौतियां रही थी उस समय उनके सामने?
1: डॉक्टर कलाम का बचपन जो है वो बहुत कठिन था
0: जी,
1: लेकिन उनके जो विचार थे और जो उनके साथ जो लोग मिले जिन्होंने उनको एक तरह से सपोर्ट दिया, एक रोल मॉडल बन पाए
0: जी,
1: वो अधिकतर मतलब कहूंगा पेरेंट्स खुद ही मानते हैं बात को, कुछ टीचर जिनके नाम वो लिखते हैं बताते भी हैं
0: जी,
1: ये दोनों ने मिलकर उनको मतलब इस प्रकार से प्रेरित किया कि वो बीएससी करे, उसके बाद इंजीनियरिंग करे, और उनको मौका मिल गया कि वो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स में जुड़ गए, और वहां पर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो सब जगह लिखा ही हुआ है
0: जी।
1: उनका जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ जुड़ाव था उसमें उनको फेलियर्स भी मिले एंड सक्सेस भी मिले। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है जो कि रश्मि जी की पुस्तक में भी आ रहा है
0: जी,
1: कि फेलियर्स को किस तरह से सामना करना और उससे डिफीट नहीं होना है ना, उसको आगे बढ़ाना है। तो उससे फिर वो जब डिफेंस में आ गए तो कुछ उनके मन में आ रहा था कि मैं तो स्पेस में इतना अच्छा काम कर रहा हूँ क्यों मुझे भेजा जा रहा है वहां पर। लेकिन जो उनको जब चुनौती बताई गई कि क्या है, और वो चाहते थे कि मिसाइल्स बनाई जाएं, और उनका जो एक्सपीरियंस है स्पेस रिसर्च में उससे उससे मिसाइल्स को भी फायदा बेनिफिट होगा
0: जी,
1: तो फिर वो यहाँ आ गए। और उन्होंने सबसे पहले मैं कहूंगा वो काम करा जो पुराने जो वहां पे वैज्ञानिक लोग थे नहीं कर पा रहे थे, वो था नवाचार। उन्होंने इनोवेशन को बहुत सपोर्ट दिया
0: जी,
1: और उस प्रकार से उन्होंने फिर जो अग्नि, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी जो मिसाइल्स बनाई एक के बाद एक, उन्होंने उनकी टीमों ने
0: जी,
1: वो तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि इन्होंने उसमें इनोवेशन लाया। और एक उदाहरण है अगर आप सुनना चाहें तो
0: जी,
1: समस्या थी जिसमें वो जुड़ रहे थे, फंसे हुए थे, तो उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से और ढेरों मतलब इंस्टीट्यूशन से वहां के लोगों को बुलाया, उनके सामने प्रॉब्लम पेश करी गई, उनको 7 दिन का समय दिया गया, और जो उन्होंने उसमें सोल्यूशन निकाले उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करा गया, और फिर उसके साथ मिलकर उन्होंने अपना जब लॉन्च करे सैटेलाइट तो सक्सेसफुल हुए
0: जी।
1: इसी प्रकार से उनके मतलब जो रहता था कि जो सरकारी तरीके से अगर करते तो शायद उनको लग जाते उसमें महीनों लग जाते, यहाँ उन्होंने हफ्तों में वो करके दिखा दिया
0: जी।
1: फिर वो आगे एटॉमिक एनर्जी में उनको लाया गया, उस समय पोखरण की तैयारियां हो रही थी और उनके नेतृत्व में पोखरण 2 बनाया गया, और जिसकी वजह से फिर 1998 के बाद से हम लोग टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट करते हैं
0: जी।
1: वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया, और उसके लिए वो अपनी तरह से पूरे

0: क्लियर थे कि देश को पावरफुल होना चाहिए और वो अगर पावरफुल है तो ही मतलब आगे बात बढ़ेगी, पीस रहेगा, और अगर पावरफुल नहीं है तो पीस रहना मुश्किल है
1: जी।
0: तो शांति के लिए उन्होंने मतलब ये करा था। और उसके बाद फिर वो समय देके वो तो चाहते थे स्पिरिचुअलिटी
1: जी,
0: और बहुत समय उन्होंने खर्च करा अपना 1997 के बाद से, कई गुरुओं से मिले, ब्रह्म कुमारी के वहां पे जाके समय बिताए
1: जी,
0: और भी कुछ करा। उनको लगता था कि मतलब हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ हम लोग को यहाँ पर हम लोग आए हैं तो कुछ हमने करना चाहिए
1: जी।
0: वो समय उनके मेरे ख्याल 3-4 साल जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। फिर वो राष्ट्रपति बन गए और वो तो माननीय हम लोग के वो पीपल्स प्रेसिडेंट रहे
1: जी।
0: क्या क्या नहीं करके दिखाया उन्होंने, जो उनका जुड़ाव रहा बच्चों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, वो देख के हम लोग को हमेशा ही मैं कह रहा सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए इंस्पिरेशन बनते थे। उनको लगता था कि यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है जो कि बुजुर्ग लोगों के साथ बात करके शायद नहीं मिलती
1: जी।
0: तो जैसे हम लोग एक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस करते थे हर वर्ष, वो उसमें जुड़ते थे आके, और उनके पास अगर मतलब समय नहीं हुआ दूसरी बात है, लेकिन अदरवाइज उन्होंने मेरा ख्याल है कि 6-7 बार आए हैं वो, और उन्होंने मतलब बच्चों से बात करी है और प्रश्न पूछते थे
1: जी,
0: प्रश्न का जवाब देते थे, जो बच्चे प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देते थे। मेरा ख्याल है उनके जो ये क्वालिटीज हैं ये फ्यूचर के लिए बहुत मुश्किल होगा किसी और में ढूंढे मिले।
1: तो आपने तो देखा है बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों का उत्साह उस समय कैसा होता था, किस तरह की प्रतिक्रिया बच्चे देते थे?
0: बच्चे जैसे बिल्कुल मगमुग्ध हो जाते थे
1: जी।
0: मेरे बगल में इधर एक लड़की बैठी हुई थी, पसीना टपक रहा है उसके, हम लोग मैसूर में थे और कलाम साहब जो है उसको बात पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक दिस विल हैपन, ये वो इतना मतलब सिर हिला के उसके लिए मतलब उस पूरे हॉल में सिर्फ 2 लोग थे, वो और डॉक्टर कलाम
1: जी,
0: बाकी 600-800 लोग और हैं वो उनके लिए मतलब नहीं था, क्योंकि इनसे बात करी थी उन्होंने, लड़की से बात करी पूछा था कुछ
1: जी।
0: तो इतना मुझे अच्छा लगा कि देखो ये कैसा कम्युनिकेशन है बिटवीन सीनियर साइंटिस्ट एंड ए यंग गर्ल 12 इयर्स 13 इयर्स
1: जी,
0: लेकिन कंप्लीट कम्युनिकेशन है, वो लड़की समझ रही है क्या बोला जा रहा है, वो समझ रहे हैं कि लड़की क्या जवाब दे रही है
1: जी।
0: और उसको मतलब बहुत एनकरेज करा और बैठा दिया। आई वुड लाइक टू नो कि वो लड़की कहाँ है, मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं जरूर साइंटिस्ट ही होगी
1: जी।
0: तो ये इस प्रकार का उनका जो पकड़ था वो इम्पॉसिबल टू रिट्रेस। एक और बताऊंगा मैं कि December 2004 में वो सुनामी आ गई थी, बहुत लोग डिस्टर्ब थे, उनका समय था हम लोग के साथ 26 तारीख का, वो 26 तारीख को ये सुनामी आ गई थी तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि 29 को आ जाएंगे, 29 को आ गए डिस्पाइट द फैक्ट कि वो राष्ट्रपति हैं, उनके सामने बहुत सी चिंताएं हैं
1: जी।
0: बहुत से लोगों में यहाँ भी मतलब कोस्टल एरिया पे बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, वो भी परेशान थे, लेकिन उनका आगे हम बच्चों से बात करेंगे
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में सोच के जान के
1: जी। तो बच्चों को वो प्राथमिकता देते थे, उनके विचारों को सुनते थे और फिर समाधान भी करते थे, और इसीलिए शायद बच्चे जो हैं वो भी जो कलाम साहब ने उन्हें सपने देखने सिखाए थे उन पर वो आगे बढ़े हैं, और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो श्रेय देते हैं कलाम साहब को ही कि आज उन्हीं की वजह से हम ऊंचाइयां छू पाए जीवन
2: जी।
1: में जी। तो यहाँ मैं अनुज जी आपकी पसंद का एक गाना जानना चाहूंगी अपने श्रोताओं के लिए।
0: गानों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन हाँ एक गाना जो याद आ रहा है
1: जी,
0: छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी
1: जी,
0: नया जोर है ना, मिलके लिखेंगे कहानी
1: जी, बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। और जैसा कि ये गाना भी हमें कहता है, मिलकर लिखेंगे नई कहानी। तो कलाम साहब ने अपने जीवन से हमें ये प्रेरणा दी, उन्होंने नवाचार को प्राथमिकता दी और उन्होंने नए मस्तिष्क जो बच्चे थे उनके अंदर ऊर्जा भरी। यहाँ मैं डॉक्टर नकुल आपसे जानना चाहूंगी, कलाम साहब जब भी बच्चों से मिलते थे तो ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बड़े सपने देखो, ये हमेशा कहते थे। आपको क्या लगता है इस एक पंक्ति का क्या जादू रहा होगा?
1: पंक्ति का ये जादू रहा कि उन्होंने खुद इसको, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले किसी चीज को कहने से पहले वो खुद आत्मसात करते थे और फिर चाहते थे कि वो अपने अनुभव के आधार पर लोगों में उस बात को पहुंचा पाए।
0: जी,
1: और उनका हमेशा ये रहा कि सपने आपके अंदर बड़े होने चाहिए कि आपको आपकी नींद गायब हो जानी चाहिए और जब तक आप वो सपना हकीकत में ना हासिल कर लें तब तक आप उस पर काम करते रहें।
0: जी
1: ये एक तो उनका ड्रीम का रहा। दूसरा, बहुत ऐसे कई अनुभव रहे। व्यक्तिगत तौर पे मुझे एक लाभ मिला, मेरे दिवंगत ससुर साहब के साथ उन्होंने

0: काम किया डीआरडीओ में, वो भी साइंटिस्ट थे, वो भी एडवाइजर थे,
1: जी
0: तो कई बार उनसे पता चलता था कि देर रात तक काम करना और सुबह जल्दी उठना उनका नियम था, ये कई सालों से ये नियम था। और ये नियम जब उनसे पूछा गया तो कहाँ से मिला, तो वो एक ऐसे परिवार में थे जिसमें चार भाई बहन थे वो, और उनकी सबसे बड़ी बहन ने उनको सहयोग करके उनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट कराई थी।
1: जी।
0: तो उसके अंदर उनको ये एहसास था कि कैसे अगर किसी चीज को प्राप्त करना है, वो कहते हैं ना कि नो पेन्स एंड नो गेन्स, उसका वो सार्थक उदाहरण थे और वो करके दिखाया उन्होंने। और रही बात उनके बच्चों के साथ और सबके साथ, उनका ये मानना था, जैसे अभी हमने कहा कि वो पीपल्स प्रेसिडेंट थे, अभी सिन्हा साहब ने बताया कि उन्होंने मिसाइल पे काम किया तो वो मिसाइल मैन हुए, और ऐसे न जाने कितने एडजेक्टिव्स उनके साथ जुड़ते चले गए। उनका स्वभाव, उनका काम, वो एक आदर्श स्थापित करते चले गए। जैसे डॉक्टर अश्विनी ने बहुत अच्छा कहा अभी कि वो कोई भी चीज, कोई भी काम करने से पहले जो भी कुछ सोचते थे उसको पहले उसको प्रैक्टिकली कर। और साइंटिस्ट का एक मेरे ख्याल से गुण है कि वो कोई भी चीज अगर प्रपोज करता है, हाइपोथेसिस कुछ भी करता है, तो उससे पहले वो सोच के रखता है कि उसको प्रैक्टिकल कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये सारी तमाम चीजें अगर आप देखें, और साथ में उनकी जो एक और किताब है विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर ये आपको पढ़ने को मिलता है। और मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर रश्मि का उपन्यास और विंग्स ऑफ फायर हर एक बच्चे को और हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिसमें ये लालसा है, जिसमें वो समझता है कि चाहे वो वैज्ञानिक वो बैकग्राउंड से हो या ना हो, पर एक आम आदमी के अंदर एक आगे बढ़ने की ललक है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जिसे कहते हैं किसी भी चीज के लिए एक ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म या बुक होती है, उसी तरह से वो ये दो किताबें मेरे ख्याल से सबके लिए इतने अच्छे तरीके से डॉक्टर रश्मि का उपन्यास सहजता से लिखा गया है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा वो रहेगा। इस पे अगर हम डॉक्टर रश्मि से भी और चर्चा करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
2: जी बिल्कुल। मैं रश्मि जी अब आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम सामाजिक पक्ष की बात करें डॉक्टर कलाम के, तो जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आते थे, जिस तरह की कठिनाइयां उन्होंने झेली हैं और उसके बाद जो उपलब्धियां उनकी रही हैं, मैं चाहूंगी कि आप इनके बारे में भी जरूर हमसे चर्चा करें और हमें ये बताएं कि आम तौर पर उस तरह की कठिनाइयों में बच्चे कैसा महसूस करते हैं और कैसे कलाम साहब एक उदाहरण बने सबके सामने।
3: जी बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगी कि आजकल जब बच्चे सुविधाओं की बात करते हैं तब हमें डॉक्टर कलाम बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण की तरह सामने आते हैं। डॉक्टर कलाम के अगर बचपन को देखें आप, तो धनुषकोटी के, रामेश्वरम के धनुषकोटी के एक छोटी सी जगह से निकले वे बालक थे जो कि सपने देखते थे। छोटा सा उनका घर जहाँ वो रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने माता जी, पिताजी, उनके पिताजी मस्जिद के
0: मेन,
3: और उस परिवार से वो निकल कर आ रहे हैं। और हम जैसा कहते हैं कि उन्होंने बचपन में अखबार भी बांटे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उनके जो कजन थे एजेंसी चलाते थे। डॉक्टर कलाम साहब ने उस बचपन में, जब आज हमारे बच्चे सुविधाएं मांगते हैं, उन्हें एसी रूम चाहिए, पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, तब डॉक्टर कलाम सुबह 4 बजे उठ करके ट्यूशन पढ़ने जाते थे, लौटते वक्त अखबार घरों घरों में डालते थे, इसके बाद आकर फिर अपने स्कूल पढ़ने जाते थे। तो इस तरह का उनका जीवन था। तो अगर आप कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, आप बड़े बनना चाहते हैं, तो आप उस बड़े व्यक्ति को ये ना देखें कि वो बड़ा बन गया, ये देखें वो बड़ा किस किस तरह से बना, किन किन जर्नियों से गुजरा, क्या क्या संघर्ष थे उसके जीवन में, तब वो बड़ा बना। तो डॉक्टर कलाम हमें यही बता रहे हैं, वो इतने बड़े पदों पर रहे, राष्ट्रपति के पद पर रहे वो सब, लेकिन उन्होंने कभी, मैं उनको देखकर ये नहीं कहती कि वो लोगों को प्रभावित करते हैं या उन्होंने मुझे प्रभावित किया, नहीं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। बहुत फर्क है इन दोनों शब्दों में कि आप प्रेरित हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा वैज्ञानिक, आप ये सोचिए कि वो अपने शांति के क्षणों में वीणा बजाता था, जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दी वो कर्नाटक संगीत सुना करते थे। तो ये उनके जीवन के वो पक्ष हैं जो और हमें उनके लिए एकदम प्रेम से, आदर से भर देते हैं।
2: जी बिल्कुल। और इनमें विरोधाभास भी नजर आता है, लेकिन एक इस तरह का विरोधाभास, जैसा कि आपने कहा कि वो हमें प्रेरित करता है। मिसाइल मैन के हाथों में जब हम वीणा देखेंगे तो कैसी अद्भुत छवि वो लगेगी।
3: जी, क्योंकि मिसाइलें जो है वो मनुष्य को पूरा मनुष्य नहीं बना रही हैं। जब उसके अंदर संवेदनाएं हैं, जब वो संगीत से जुड़ा है, कला से जुड़ा है, तब उनके अंदर संवेदनाएं जागती हैं। क्योंकि डॉक्टर कलाम का जो कार्य था ना, अगर आप ध्यान से देखें तो वो अध्यात्म के स्तर पर था। उनके लिए वो भक्ति थी, देश प्रेम उनकी प्रगाढ़ भक्ति थी। तो हम ऐसे उन्हें समझते हैं आज।
2: जी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि बार बार हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी

0: थी कलाम साहब को पढ़ें, उनके बारे में जानें, क्योंकि जो सपने उन विद्यार्थियों के मन में हैं उसकी राह इस जीवनी से हमें मिल सकती है, कलाम साहब को जानने से मिल सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, हम जब विकसित भारत की बात करते हैं और हम अभी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत हमें बनाना है, ये लक्ष्य हमारे सामने है, ऐसे में एक लक्ष्य उन्होंने रखा था इंडिया 2020, हम इस बारे में जानना चाहेंगे।
1: डॉक्टर कलाम के बहुत से कंट्रीब्यूशंस हैं
0: जी,
1: और जिनको सबको लिस्ट भी नहीं करा जा सकता।
0: हुँ.
1: अपना समय दिए और एक कमेटी में वो चेयरमैन थे, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल में, और उसमें उन्होंने 5 एरियाज जोड़े थे जिसपे उन्होंने कहा था कि देश को काम करना चाहिए, जो आप कह रही हैं कि आगे कैसे बढ़े, विजन 2020 क्या होना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा था कि कृषि और फूड प्रोसेसिंग इसमें जोड़ना चाहिए
0: जी,
1: और उसके उन्होंने मतलब कई सजेशन दिए थे उनकी कमेटी ने। दूसरा पावर जनरेशन, हम लोगों को जितनी हम लोगों को जरूरत है उतने उससे उतनी होनी चाहिए, इस समय कम है। फिर उन्होंने एजुकेशन पर बहुत जोर दिया था
0: जी,
1: किस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए हेल्थ केयर के साथ जोड़ के, और उस पर भी उनका अपना जो बड़ा तजुर्बा था हैदराबाद में और उससे पहले भी हेल्थ के साथ में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा उनका। फिर उस समय जो आ रहा था ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
0: जी,
1: ये पिछले 20 वर्षों में हमने देखा ही है पूरा देश किस तरह से बदल गया। और फिर उन्होंने कहा था स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं डिफेंस के और स्पेस के
0: जी,
1: इसमें हमें आगे बढ़ के रहना चाहिए। तो विजन 2020 जो है उसमें इन सब चीजों को जोड़कर उन्होंने बनाया था। साथ में ये मतलब एक उनकी जो कि बैकग्राउंड उस तरह का रह चुका है, उन्होंने कहा कि प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज
0: जी,
1: इसका मतलब पूरा PURA, वो कहते थे कि इस पे काम करो। तो उन्होंने IIT चेन्नई को, IIT दिल्ली को और कई संस्थाओं को जोड़ा था कि कैसे नहीं हम लोग कर सकते हैं कि लोग गांव में रहें और गांव में ही कंट्रीब्यूट करें रादर देन कि सबके सब माइग्रेट करके शहरों में आए। तो रूरल एरियाज में उनका कहना था कि अर्बन फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो उसमें कई उन्होंने मतलब अपना समय लगाया, जो आपके जो बतानी थी कि रात रात भर वो सोचते थे, समझते थे, बातचीत करते थे और उससे उभर के निकल के आता था कोई अगर रिजल्ट। ये जो विजन 2020 है मेरा ख्याल है कि अभी भी इसमें अगर देखा जाए तो जरूर बहुत से अच्छे एक्सपर्ट्स ने कंट्रीब्यूशन किया है और उस पर डॉक्टर कलाम का छाप है, उस पर उनकी हर एक सेंटेंस पे उनकी छाप है
0: जी। डॉक्टर नकुल, आपसे जानना चाहूंगी, जब कलाम साहब ने वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था और आज जब हम कहते हैं कि हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अधिक से अधिक क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे तुलना करेंगे दोनों समय की? आज हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड कैसा है?
2: देखिए, जैसे सिन्हा साहब ने अभी बहुत कुछ बताया कि उनका विजन 2020 का जो डॉक्यूमेंट था वो अपने आप में एक मानक था, एक स्टैंडर्ड था, जिससे बहुत कुछ और बहुत जो उसके बाद का जो भी समय रहा उसमें जितने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े जितने भी मंत्रालय, करीब 9-10 ऐसे मंत्रालय जो डायरेक्ट और अनडायरेक्ट तरीके से काम करते हैं, उन सब ने उसको समझने की कोशिश करी, उसको लेके आगे चलने की कोशिश की, वहां से बहुत कुछ लिया और उसको डेवलप किया
0: जी।
2: मेरा ये कहना है कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और खासकर अब तो हम देखते हैं कि हर छोटी सी चीज के लिए भी हम AI का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में भारत ने बहुत तेजी से पिछले 10-12 सालों के अंदर बहुत तेजी से काम किया है और एक दौर रहा जहां हमने देखा कि इन सब चीजों के लिए रिसर्च के लिए खासकर जैसा कि कलाम साहब का खुद का कहना था इसके लिए एक तवज्जो, एक इम्पोर्टेंस, एक इम्पीटस मिलना चाहिए और इसके लिए जो रिसर्च के फंड्स हैं उनका उसमें इन्हेंसमेंट होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष देश का एक RDI जो 1,00,000 करोड़ का जो रिसर्च का जो फंड है वो जो भारत सरकार ने लाए हैं वो बहुत बड़ी चीज है। फिर रिसर्च के अंदर उनका ये बहुत आवश्यक था कि जितने भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जो एक मानक होते हैं कि आप क्या रिसर्च करते हैं, तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बेचारे इतने महंगे रिसर्च से वंचित रह जाते थे। तो सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। इस तरह से आप देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्वांटम मिशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक मिशन है जो सुचारू रूप से उस पर काम कर रहा है और देश के जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक और बड़े बड़े लोग हैं सब उसमें जुड़े हुए हैं और तेजी से उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, देश में जितने भी ये डेवलपमेंट है वो वैश्विक स्तर पे जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ एक पेस बना के चल रहा है और कुछ स्तर पे तो मैं भी ये

कहूंगा कि चूंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा समय रहा, तो मेरा ये मानना है कि जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर है खासकर, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है अभी जो हमने लॉन्च किया, जो प्राइवेट सेक्टर से जो हमारा सेटेलाइट लॉन्च हुआ, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे हम सबको समझ में आ रहा है, विशेषकर डिफेंस के अंदर जो प्राइवेट प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, वो सब काबिल-ए-तारीफ और इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमने समय के साथ अपने आप को

0: तेजी से हो रहा है और मेक
1: जी
0: इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो सब काबिले तारीफ और इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमने समय के साथ अपने आप को उसके साथ जोड़ के रखा और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि कलाम साहब का वो सपना
1: जी
0: हम सब और खासकर विज्ञान और का सपना हम पूरा कर पाएंगे। बस एक बात कहने में जरूर करना चाहूंगा कि इसके साथ विज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाने का जो प्रयास है उसको और तवज्जो देने की जरूरत है।
1: जी उसमें हम और बहुत कुछ कर
0: कर
1: सकते
0: सकते हैं
1: हैं।
0: जी
1: जी पीपीपी मॉड्यूल जो है
0: जी जी
1: पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
0: जी
1: साइंस में
0: जी
1: लिया है,
0: जी
1: तो ये
0: जी
1: बहुत अच्छा
0: जी
1: रिजल्ट दे
0: जी
1: रही
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: जी यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, जैसा कि अभी डॉक्टर नकुल ने कहा कि हम जो साइंस है उसे आम लोगों तक पहुंचाएं, तो आपके विचार में क्या किया जा सकता है?
2: जो डॉक्टर कलाम ने जो हम लोग को राह दिखाई है
1: जी
2: उसमें ही बहुत गुण हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि पूरा जो उनका प्रोग्राम था
1: जी
2: और जो उसमें कई वैज्ञानिक जुड़े साथ में, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दी कृषि, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, किसान के पास सही इनपुट्स मिलते हैं, उसको सही टाइम पे मिलते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ सकता है और अपने फिर परिवार का भी ध्यान रख सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हर हर स्टेप पे हम लोग को डॉक्टर कलाम के जो आइडियाज थे और जो जो लिख के रखे हैं और जो
1: जी
2: सजेस्ट किए हैं उसमें हम लोग को ढूंढना चाहिए, कई सोल्यूशन मिल जाएंगे हम लोगों को।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल
1: तो
0: हाँ
1: कलाम साहब ने जब विभिन्न पद संभाले, जिम्मेदारियां संभाली, तब भी हमारा नेतृत्व किया, बहुत योगदान दिया उन्होंने अलग
0: जी
1: अलग क्षेत्रों में,
0: जी
1: और आज अगर हम उनका लिखा हुआ पढ़ेंगे तब भी हमें समाधान मिलेंगे।
0: बिल्कुल
1: रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक इस तरह का प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि अगर आप छोटी बच्ची होती और आज आप कलाम साहब से मिलती तो आप उनसे क्या सवाल करती, अगर आपको मौका मिलता तो?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं सच में अपने अंदर एक छोटी बच्ची महसूस कर रही हूँ। आज डॉक्टर कलाम मेरे सामने होते और मैं उनके सामने ये पूछती कि सर, ये दुनिया जो आज इतना दौड़ रही है, भाग रही है, विनाश की तरफ जा रही है, इसे हम कैसे रोकें? और सच मानिए, डॉक्टर कलाम का यही सपना था कि इस धरती को रहने योग्य बनाना है। वो इतने बड़े बड़े पदों में पहुंचे लेकिन अंततः अपने आप को एक शिक्षक मानते रहे कि
1: जी
3: मैं एक शिक्षक हूँ। और ये असीम कृपा है उनकी ईश्वर पर कि जब वो दुनिया से दैहिक रूप से गए तो एक शिक्षक के रूप में ही गए।
0: जी
3: राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी उनमें कभी विलासिता नहीं थी, बस एक
0: बिल्कुल
3: शिक्षक का गुण था।
0: बिल्कुल
3: अपने सामने बैठे लोगों को इतना ध्यान से समझाते थे, इतने प्यार से बताते थे, जैसा सर ने बताया
0: जी
3: कि वही इनका जो गुण है वो हम आज याद करते हैं, क्योंकि उनकी विनम्रता, उनका मिसाइल मैन होना वो
1: जी
3: बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है, लेकिन करोड़ों आंखों में जो वो सपने देकर गए वो विरासत है हमारे लिए जो
0: बिल्कुल
3: हमेशा हमारे पास रहेगी।
0: जी
3: तो मैं उनसे यही प्रश्न करती कि अगर मैं इस दुनिया में आई हूं तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस दुनिया को रहने लायक अपनी तरफ से योगदान दे सकूं?
1: जी बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया इसका, और शायद ये हम सबके मन में सवाल होना चाहिए कि हम अपनी ओर से क्या योगदान कर सकते हैं
0: बिल्कुल
1: अपने देश को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ इसी मोड़ पर आप बताएं, आप कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
3: मुझे लगता है ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
1: वाह।

0: सिर्फ इस गाने के बोल ये नहीं है, बल्कि हम सबके दिलों में यही भावना है कि हमारा देश आबाद रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे और हमें इस तरह का नेतृत्व प्राप्त होता रहे अपने लक्ष्यों के लिए, जैसा डॉक्टर कलाम ने दिया था। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, अगर हमारे युवा साथी जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो वैज्ञानिक बनने का सपना देखते हैं, तो उनके सामने कौन से दरवाजे अभी खुले हैं, उन्हें किस तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहिए?
1: जो वैज्ञानिक है या कोई भी स्पेशलाइजेशन में,
0: जी
1: आजकल बड़ा नैरो एरिया हो गया है हर एक वैज्ञानिक के लिए, हर एक स्पेशलिस्ट के लिए।
0: जी
1: और ये नकल भी मेरी बात मान जाएंगे, हम लोग जो है वो ओपन माइंडेड इतने नहीं हो पाते हैं कि काम कर सके या जो युवा पीढ़ी है उनको गाइड कर सके। हम लोग चाहते हैं वो भी उसी नैरो एरिया में ही स्पेशलाइज करें, तो ये एक चिंता की बात है, परंतु इट इज लार्जर क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर कलाम के अगर उससे हम लोग चले तो इन्होंने जैसे अपना फर्स्ट स्टेज कहते हैं वो था हमारा जब हम इसरो के साथ थे, हमने जो है जब सैटेलाइट लॉन्च के लिए काम किया। सेकंड स्टेज जैसे रॉकेट का होता है, सेकंड स्टेज में मैं जो था डीआरडीओ के साथ था और उसमें जो मैंने कंट्रीब्यूट करा मिसाइल मैन के लिए बन गए। थर्ड स्टेज जो था वो जब राष्ट्रपति थे, और फोर्थ स्टेज कहते हैं कि जब राष्ट्रपति की गद्दी छोड़ दी उन्होंने, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट करा टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने मतलब अपनी जिंदगी कहाँ शुरू करी थी एज एरोनॉटिकल इंजीनियर, एज एरोस्पेस इंजीनियर, और किस तरह से वो अपने को भी उभारते रहे और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो ये एक अगर सोच और विचार के साथ आदमी आगे बढ़े तो मेरा ख्याल है कि जो भी उससे सामने समस्या आएगी उसका वो सही हल भी निकाल लेगा और कंट्रीब्यूट भी कर सकेगा।
0: जी,
1: तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है वो नैरो स्पेशलाइजेशन ना रखें अपने को, परंतु जो फ्यूचर की जनरेशन आ रही है उनको इस तरह से गाइड करें कि वो जो है असली में कंट्रीब्यूट कर सकें। डॉक्टर कलाम का बहुत से छोटे छोटे वो भी थे, राइटिंग में जो लिखते थे, एक तरह से फेल का क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, दैट वाज हाउ ही वुड पुट इट, कहते फेल नहीं हुए तुम, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। और कहते थे कि हमारा कैरियर देखो, इसरो में भी वो SLV-3 इन्होंने जब लॉन्च करवाया फेल हो गई, ये बड़े दुखी हुए, सचिन धवन ने इनको एनकरेज करा, नेक्स्ट टाइम सक्सीड कर गए। कहते हैं जब तक सीख करेंगे नहीं तब तक सीखें कैसे। दूसरा उन्होंने कहा था जैसे कि जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं साइकिल चला रहा हूँ या ये है कि साइकिल आपको चला रही है, तो एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट देखने का।
0: जी,
1: और ऐसी बहुत सी उनके जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं, कुछ तो मेरा ख्याल रश्मि जी की किताब में लिखे हैं, वो बड़े अच्छे हैं। और उनसे हम लोग जब बात करते हैं विद्यार्थियों से तो हम लोग उन्हीं के ये इस तरह के जो आइडियाज हैं उनको यूज भी करते हैं और लोगों से तालियां पिटवाते हैं।
0: जी जी, यानी वो कलाम साहब के दिए हुए हैं लेकिन हम आज तक उसका फायदा उठाते हैं। जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर नकुल, जैसे हम बार बार ये जान रहे हैं कि कलाम साहब बच्चों से सीधा संवाद करते थे और बच्चे बहुत पसंद करते थे इस बात को और प्रेरित होते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं। जब इस तरह के हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, इस तरह की शख्सियत जो होती हैं, बच्चों से जब सीधे बात करती हैं, आपको क्या लगता है कि उनके मानस पटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा? भले ही वो वैज्ञानिक ना बनना चाहें, भले ही उन्होंने अभी अपने जीवन के लिए कोई ऐसा लक्ष्य नहीं चुना है, बच्चों ने बस पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके मन पर प्रभाव पड़ता है इन बातों का?
2: देखिए, देश काल परिस्थिति कुछ भी रही हो, कभी भी रही हो, कोई भी क्षेत्र में कोई भी बड़ा व्यक्ति जब अपने स्तर से उतर के बच्चों से बात करता है तो उसका प्रयास होता है कि बच्चों के अंदर एक तरह की, जैसे उन्होंने कहा, प्रेरणा नहीं प्रेरित कर सके उसको, तो वो प्रेरित करने का जो प्रयास होता है वो बहुत अपने आप में अनूठा प्रयास है। और जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, जैसे कलाम साहब ने किया, और ऐसे तमाम बहुत सारे विजनरी लीडर्स रहे हैं जो उतर के इस लेवल पे करते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से मैं सेंट्रल एशिया और अर्स्टवाइल रशिया में काफी मैंने काम किया, तो मैंने वहां देखा कि जितने भी बड़े वहां के लीडर्स हैं उनका ये प्रयास रहता है कि स्कूलों में जाएं, बच्चों से मिलें, बच्चों के अंदर वहां पे शुरू करें, क्योंकि जो भी कुछ है वो घर से ही शुरू होता है। और अगर आप उनको कैच देम यंग का जो उनका फॉर्मूला है, अगर आप वो करेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का और कलाम साहब का जो अपने आप में एक अनूठा वो उदाहरण रहे, उनका ये हमेशा से प्रयास रहा है। और मेरे ख्याल से स्कूलों के अंदर भी जब हम देखते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति उसके अंदर आता

0: है। तो जैसे मैंने आपसे अभी शुक्र में जिक्र किया था कि एक कलाम साहब का एक एनेक्डोट है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जब वो वहाँ ट्रिची में पढ़ रहे थे तो उनको उनके कॉलेज में उनके एक टीचर थे जिनका नाम था कैलकुलस सोलोमन। तो वो कहते थे कि उनके एक टीचर थे तोताद्री अयंगर, तो जब वो आएंगे तो तुम देखोगे। तो उनके बारे में उन्होंने जिस तरह से लिखा है, कुछ लाइनें जो उनकी शुरू की हैं वो अपने आप में इस बात का बखान करती हैं, पूरा चित्रण करती हैं कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, क्या आता है। तो
1: जी
0: बच्चे बहुत एक सरल हृदय होते हैं और उनके मन पे वो आप उसको जैसा चाहें वैसा मोल्ड करते हैं। अगर शुरू में उनको अच्छा मोल्ड करते हैं तो अच्छा बन जाते हैं। तो वही उनका प्रयास है, उनका उनका व्यक्तित्व जब आके स्टेज पे उन्होंने हमसे बात करी, उसका प्रभाव मेरे जीवन में आज तक है। तो
1: जी
0: ऐसे ही न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं हम सबके जीवन में रहे होंगे। जब हम अपने शुरुआत में जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है तुम क्या बनना चाहोगे, तो बच्चा छूटते बोलता मैं टीचर बनना चाहूंगा, क्योंकि
1: जी
0: टीचर उस वक्त एक रोल मॉडल होता है, समय के साथ वो रोल मॉडल बदलते रहते हैं। बहरहाल जैसे रश्मि जी ने कहा कि आज अगर बच्चों के अंदर रोल मॉडल के लिए अगर हम कलाम साहब के बारे में ज्यादा लोगों को बताएं, और ये आपका कार्यक्रम अगर इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो सुन रहे हैं
1: जी
0: उनमें भी अगर रत्ती भर भी अगर ये एक बात हम पहुंचा पाए तो बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। मेरे ख्याल से ये आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सच
0: है।
1: में यही प्रयास हमारा कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, और
0: जी
1: साथ ही मन की बात में प्रधानमंत्री जी जिन घटनाओं का उल्लेख करते हैं या विशेष तिथि अगर कभी बताते हैं उसके पीछे एक पूरा संदर्भ होता
0: जी
1: है, और हमारा प्रयास यही रहता है कि उसके बारे में हमारे श्रोता अधिक जाने, और खासकर हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो जाने भी, क्योंकि उनके सामने की तो ये घटनाएं नहीं है, लेकिन साथ ही वो प्रेरित भी होते रहें
0: जी
1: और समसामयिक चुनौतियां जो आज उनके सामने हैं, जिसे
0: जी
1: हम ग्लोबल इश्यूज कहते हैं,
0: जी
1: वो उनका समाधान हमारे इन प्राचीन घटनाओं से, इन शख्सियत से, इन व्यक्तित्व से, इन संदर्भों से लेते रहें।
0: जी
1: मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर कह रही हूँ, आप तीनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, और आपके बहाने हमने पीपल्स प्रेसिडेंट को, हमने अपने प्रिय कलाम साहब को और मिसाइल मैन को, देश के लिए इतना बड़ा योगदान करने वाले एक महान शख्सियत को और जाना, उनके बारे में कुछ अनछुए पहलू हमें पता चले। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे अनुज सिन्हा जी। आप साइंस कम्युनिकेटर हैं, पूर्व निदेशक हैं, आप विज्ञान प्रसार के साथ ही आप एडवाइजर भी रहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे
0: शुक्रिया।
1: साथ इस कार्यक्रम में थे डॉक्टर नकुल पराशर। आप अप्लाइड फिजिक्स में आपने पीएचडी की, आप ऑथर हैं, विज्ञान आधारित कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, साथ ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड आप रहे, और आप भी विज्ञान प्रसार के निदेशक रहे हैं। डॉक्टर नकुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: बहुत बहुत
1: हमारे इस
0: धन्यवाद,
1: कार्यक्रम में
0: बहुत
1: आने
0: बहुत
1: के लिए।
0: धन्यवाद आपका।
1: और हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि, आप एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता भी हैं, कलाम साहब की आत्मकथा आपने लिखी, साथ ही कलाम तुम लौट आओ, कलाम इंस्पायर्स, ये पुस्तकें आपकी हैं, और आप कलाम साहब के मार्गदर्शन से ही अपनी पुस्तक आपने पूरी की है। तो डॉक्टर रश्मि, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने समय दिया, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे मेरे अपने आदर्श डॉक्टर कलाम साहब पर बोलने का मौका दिया। आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद।
1: जी, तो आज के कार्यक्रम से हमने यही सीखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना केवल वैज्ञानिक भारत का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का था जहां हर बच्चा जिज्ञासु हो, हर युवा नवाचारी हो, और हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। कलाम साहब जो कहते थे, और जो हम सोशल मीडिया पर बार बार पढ़ते हैं, और जिसे हम अपनी इंस्पायरिंग लाइंस बनाकर अपने घर की दीवारों पर चिपकाते हैं ताकि सुबह आंख खुलते ही हम इसे देखें और मोटिवेटेड हो, ये पंक्तियां हमें दी कलाम साहब ने। तो उन्हें आदर भाव से याद करते हुए मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से अनुमति लूंगी। इस कार्यक्रम के संयोजक रहे दिलीप झा, और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान और प्रमोद कुमार वत्स के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।